जोसोलपाथा नेपाल सम्बत चिन्छ सब पी खुद येनलागा चतुर्थी थो रेडियो नेपाल ख आ नेना दिशा जिरुपी पाखे नेपाल भाषा या समाचार सरकार संघीय निजामती सेवा नापा स्वाफुदुगु कानून या त संशोधन एकीकरण या त देखको विधेयक संघीय संसदीय दूतावित स्वीकृति लल ह्यागु कोछिगुदु मन्त्री परिषद या मिग सिंह दरबारे चोङ्गु बैठक निजामती सेवा नापा या विधेयक संघीय संसदीय दूतावित स्वीकृत बिगु कोचिनागो शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री नापा सरकार या प्रवक्ता सस्मित पोखरेललाई जानकारी भए दिल मिगया मन्त्री परिषद बैठक पशु बसला व ला जाँच एन 2055 या त संशोधन या त देखगु विधेयक व अपाङ्गता जुपी मनुतेगु अधिकार नापा या एन 2074 या त संशोधन या त देखगु विधेयक संघीय संसद नापा दूतावित स्वीकृति लल हागु ख अध्ययन बैठक स्वास्थ्य या त भिङ्केगु नीति अमेरिकी सरकार वोगु निगु फुटिन हेगु अमेरिकी डलर मिलियन बराबर अनुदान गुहाली स्वीकार यागु कोचिगुदु बैठक पूर्व पश्चिम राजमार्ग कथया कमला ढल्केश्वर पथलय सडक खण्ड गर्जन खोला साना जलविद्युत आयोजना बोलेफी खोला जलविद्युत आयोजना व सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कार्यालय या त तालिम शिक्षालय गुल्मत व सीमा सुरक्षा पोस्ट देखेगु नीति राष्ट्रिय वन छेलाबुला या त स्वीकृति लल ह्यागु कोचिगुदु बैठक सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णयता राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी पदे बडुवा याना गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय प्रमुख पदे पदस्थापन यागु व डाक्टर जगदीश्वर कर्मचारी यता नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा पाखिया राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी पदे बडुवा याना ऊर्जा जलस्रोत व सिंचाई मन्त्रालय सचिव पदे पदस्थापन यागु कोचिनागु शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई जानकारी भए दिल अध्ययन वैक्ला पूर्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरायत सरकार जोनागु मजुसे सुरक्षा थ्रेट उफे धुङ्कानी रेस्क्यु याना सुरक्षित थासे यङ्कागु कनादिल मन्त्री पोखरेल पूर्व प्रधान न्यायाधीश राणा दत्ती जेन्जी समूह सुरक्षा थ्रेट वोगु धका थिति सञ्चार माध्यमे वोगु बुखके छुन सत्यत मुदुगु ध्वाथुइका दिसे ख्याचु बिगु समूह विशेष प्रहरी अनुसन्धान याना चोङ्गु कनादिल प्रतिनिधि सभाया मिगया बैठके राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2083 दथुई विचार यामा धैगु प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकृत लल हागुदु बैठके प्रधानमन्त्री व रक्षा मन्त्री बालेन्द्र शाह थासँग कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम न्यवया दिगु राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2083 दथुई विचार यामा धैगु प्रस्ताव सभाया सर्वसम्मति स्वीकृति लल हागु ख बैठके विधेयक दथुई लुहङ्गु विशेष अलिसभिया दिशे मन्त्री गौतम सीमा व राष्ट्रिय सुरक्षा परराष्ट्र नीति विशेष गुप्तचर अध्ययन साइबर सुरक्षा नापाया रणनीतिक विषय तथा बिगु नापा निजा के त विधेयक मागु कना दिल मन्त्री गौतम थो सामान्य उच्च शिक्षा नीति पलिस्ता या त सोयागु विश्वविद्यालय मजुसे राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिरक्षा रणनीतिक अध्ययन व सुरक्षा कूटनीतिक थुकिया मु कार्यक्षेत्र जुगु कना दिल विधेयक दथुया सैद्धान्तिक सहल सम्बुति कासे संसद पिछ राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सुरक्षा निकाय प्रभाव शिविर प्रागिक विशेषज्ञ या त थ्याबिगु सिफारिस समिति विज्ञ तेगु बोतीसँग सुनिश्चित या मागु साइबर सुरक्षा सूचना प्रविधि भू राजनीति थे जागु हिला चोङ्गु लकसे सुरक्षाता आयाम या कथम विश्वविद्यालय बोने कुथी व बोनेगु विषय जुई मागुली सुझाव भ्यादिल विश्वविद्यालय मुख्य मेरुदण्ड ज्ञान अनुसन्धान जुई मागुली बबिया दिशे सांसद सन्थुकियाता प्रागिक स्वतन्त्रता या लागा जुई मागुली सरकार या ध्यान कोसला दिलसा अध्ययन बैठके स्वास्थ्य प्रतिनिधि सभा मिगा बैठके राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक 2083 दथ्यो विचार या मधेको प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकृत ल लागुदु बैठके स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता न्यवयादिगु राजा राम प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक 2083 या त विचार या मधेको प्रस्ताव न सभा सर्वसम्मति स्वीकृत ल लागु दुसा स्वास्थ्य लागा अनुसन्धान व नवप्रवर्तन या त प्रोत्साहन या मागु कनादिश विधेयक मधेस प्रदेश मनुतेता ये वे मालिक याना थकुए प्रदेश विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा व स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित याइगुली सांसद या मागुली सांसद सम्भव विगुदु अध्ययन बैठकके पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद विधेयक 2083
प्रस्ताव न्यवया दिलासा बैठक शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति ओजस्वी शेरचन राष्ट्रिय सभासम बोलङ्गु राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पलिस्ताव सञ्चालन विधेयक नापाया समिति प्रतिवेदन 2083 न बैठक शून्य इले सांसद पिसा थोय असोज 8 गते निश एघार गते तक्क मडिक वोगु वालङ्ठ्याङ्कगु जनथन्या क्षति राहत उदारिया व्यवस्था लिचोलापिनीगु मा कथया व्यवस्थापन नापाया विशेष सरकार ध्यान कोसाला दिगुख सांसद त्यसा नखाचखाया इले उपयोगु बजार ठिके जुइगु हाकुगु बजार नियन्त्रण या मागु नखाचखाया इले सडके मनुतेगु मोमो जुइगुली सेनाचङ्गु सडक त याक्न भिङ्के मागु थिथी थासे सिङ्गु ताते त याक्न देके त ज्यान हिजाके मागु नपाया विशेष सरकार ध्यान कोसाला दिगु खसा प्रतिनिधि सभा मेगु बैठक ठाउँ बुधबार हिनेसिया छता इले चोनिगु गोसादु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नापा नेपाल नीति भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवमा मिग विदाया नदी गुदु राष्ट्रपति कार्यालय जुगु नाप्ला ज्या नेपाल भारत दथिया निगु दे दथिया स्वापु या त बालाकी गु विशेष सचिव त कागु खसा मिगे उपराष्ट्रपति राम साय प्रसाद यादव नापा लाइन चोरे दुगु उपराष्ट्रपति कार्यालय भारतीय राजदूत श्रीवास्तव मन नाप्ला नदी गुदु अथिया नाम मिगे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नापा न भारतीय राजदूत श्रीवास्तवमा विदाया नदी गु खसा नाप्ला ज्या छोले प्रधानमन्त्री शाह नेपाल भारत दथिया स्वापु सद्दाम बालाकी वेलनाई गु कनादी से वेक आ खुशी बाओ चलस जुगु हठयता भारत सरकार देशना वोगु ग्वालिया नितिन लसहना देशना दिल ऐतिहासिक सांस्कृतिक नखा इन्द्र जात्रा लियोसिम हिग सनिल गुता इजे निङ्यागु मिनेटे को थगुदु भाद्र शुक्ल द्वादशी आदि हनुमान ध्वाखा दरबार लाग्या इन्द्र दोस्थान याना न्याकगु इन्द्र जात्रा सोनि गया ताहागु जात्रा ख मिग चाने इन्द्र दोष पातन याव च्यान्वे दि ताहागु जात्रा पुङ्गु गुठी संस्थान धागुदु थोयान्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हनुमान ध्वाका लागा छाया श्री गणेश श्री भैरव श्री कुमारी सिनन्टिना प्रसाद ललहाना दिगुख सिन प्रसाद क्याधुङकानी राष्ट्राध्यक्ष कुमारी नापा खड्ग हिलिगु चलन्दु मिगन हिने मिसा तेस जक्क सालीगु ख या त साला नानी चा यात्रा पुङ्क गु ख थो जात्रा इन्द्र जात्रा लिपाङ्गु जात्रा ख इन्द्र जात्रा लसता थोए असोज 10 गते माथिल्लो ट्वाले चुए चुङ्गु ट्वाल श्री गणेश श्री भैरव श्री कुमारी या ख या त सागु ख इन्द्र जात्रा या मुडी असोज 9 गते शुक्रबार कुए चुङ्गु ट्वाल श्री गणेश श्री भैरव श्री कुमारी या ख सागु ख नेपाली कङ्ग्रेस या झिङ्याकको राष्ट्रिय महाधिवेशन थोए असोज 18 गते ये जुई ट्याङ्गु दु कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय या कार्यवाहक मुख्य सचिव श्री कृष्ण प्रसाद दुलाल मिगछको विज्ञप्ति पिथौ सेन्दे या थिथि थासे तस्क वा वो गु हुनी प्रदेश सभा वा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन लिपा लागुली धागु इसो सिबे निन्नु लिच्छा मागु जानकारी बिया दिल कङ्ग्रेस या झिङ्गा कगु महाधिवेशन उले ज्याजो असोज 18 गते निसे असोज 18 गते निनेसिया नेता इले खुला मञ्चे जुइगु कङ्ग्रेस या धापुदु नेकपा एमाले नायक केपी शर्मा ओली आवनिसे पार्टी दुने अराजकता धनीगु धया दिगुदु आपुङ्कगु पार्टी सोकगु पूर्ण केन्द्रीय कमिटी बैठक या हसना नापामिक कोशी मधेस बागमती सोनिग विशेष सम्पर्क समन्वय प्रदेश पदाधिकारी तेता भर्चुअल कथन कघाना दिसे नाय ओली आवनिसे पार्टी नीति ओ अनुशासन अख उनिपि अराजकता बोलङ्की पि दथि छक्क कारवाही आएको ख्याचो ब्यादिगु ख नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी वैगु दिने पार्टी खे सक्रिय जुया जनता सेवा व राष्ट्रिय हित या विशेष ज्यायागु कनादिगुदु मिग गोसागु लसहना जाझोले वेक्ला एमाले थ या त बिगु वरिष्ठ नेता या भाला स्वीकार्यासे पार्टी या त अझ सेला कि त थगु फाला जुइगु थया दिगु ख सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा खुशी बाओ चलया हुने जिनासँगु नेपाल टेलिकम या दूरसञ्चार सेवा शीघ्र याक्न हान सञ्चालन हे त उजा ब्यादिगुदु सञ्चार मन्त्रालय सचिव राजेन्द्र प्रसाद पौडेल नेपाल टेलिकम या प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल नापा या नेपाल टेलिकम या उच्च व्यवस्थापन नापा मिग मन्त्रालय जुगु सहलासा संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा खुशी बाओ चलासा टेलिकम या टावर व साइट ठ्याङ्कको क्षति दिनासँग दूरसञ्चार सेवा आतकया पुनस्थापना प्रगति व ल्याउँदगु ज्या विशेष आफ्ना सहल व्याका दिगु सहलासा नेपाल टेलिकम या प्रमुख सञ्चालक
अधिकृत प्रेम प्रसाद सिलवाल यो थे थासे टावरे मत आपूर्ति बन्द जुगुलिन टेलिफोन व इन्टरनेट सेवा खे लिचो लागू कना दिल बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर थगु प्रदेश भोटे कोशी खुसी बासा लिचो लागु लागा पुनर्निर्माण नीति खुगु प्रदेश नापा ग्वालिया इनाफ याना दिगुदु जिल्ला समन्वय समिति चितवन मिक गोसागोको कार्यालय व स्थानीय तहतेको समीक्षा बैठक यता कघना दिसे वैकल बागमती प्रदेश आ महाविपत्ति वोगु पुनर्निर्माण नीति नेगु प्रदेश मुख्यमन्त्री पिनापा ग्वालिया नीति इनाफ याना दिगु ख भोटे कोशी खुसी बासन लिचो लागू लागा खोज तथा उद्धार राहत वितरण व सडक सम्पर्क पुनस्थापना ज्यायता लिचो लागे त सफुडुगु निकाय दथि समन्वय जुयासङ्गुदु मनसुन प्रतिकार्य कमान पोस्टे हिग जुगु बैठके भोटे कोशी खुसी बाओ थोए असोज 8 गते निश एघार गते तक्क वोगु मडिक वोगु लया हुने खुसीबा चल डुबिना सेङ्कगु लिता भिङ्केता व्यवस्थापन व डिनाचङ्गु सडक हान न्याकेगु कुत विशेष सल जुगु ख केन्द्रीय मनसुन प्रतिकार्य कमान पोस्ट संयोजक डाक्टर धर्मराज उप्रेती नापाया पुचसा रसुवा नुवाकोट धादिङ जिल्ला

नापो पार छेउ मै जाने बेलैमा संसार धोबी है धारा संसार पार मैलु गाधुने छु

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासँ सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। नेपालक लेल नवनियुक्त पाँच देश के आवासीय राजदूत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष ओहदा के प्रमाण पत्र प्रस्तुत कयलनि अछि। राष्ट्रपति कार्यालय में आई आयोजित अलगे अलगे विशेष समारोह में थाईलैंड के राजदूत डोनाबीट पुलसावत, संघीय गणतंत्र ब्राजील के राजदूत क्लाउडियो राजा गवालगिया लिंच, इस्लामिक गणतंत्र पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद आमिर खान, फ्रांस के राजदूत फ्रांसवाज पुइग इंजा आ गणतंत्र कोरिया के राजदूत पार्क जे क्यूंग ओहदा के प्रमाण पत्र प्रस्तुत कयलनि। समारोह में नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी सब की सेहो उपस्थिति रहल। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर शाही द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख अछि, नवनियुक्त राजदूत के लाजिम पाठ सँ राष्ट्रपति कार्यालय धरि रिडिसला सहित के वगी में सवार कराल गेल छल। प्रतिनिधि सभा सँ चारिटा विधेयक दफावार विचार विमर्श के लेल संबंधित समिति में पठाओल जाके विधेयक सर्वसम्मति सँ स्वीकृत भेल अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सविता गौतम मेल मिलाप संबंधी दोसर संशोधन विधेयक 2083 के दफावार विचार विमर्श के लेल संबंधित समिति में पठाओल जाके प्रस्ताव प्रस्तुत कयने छलथि। एना मंत्री गौतम नेपाल कानून आयोग पहिल संशोधन विधेयक 2083 के दफावार विचार विमर्श के लिए संबंधित समिति में पठाओल जाके प्रस्ताव प्रस्तुत कयने छलथि। ओ निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधी विधेयक 2083 के दफावार विचार विमर्श के लिए संबंधित समिति में पठाओल जाके प्रस्ताव प्रस्तुत कयने छलथि। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी राष्ट्रसभा में उत्पत्ति भेल संक्रामक पशु रोग नियंत्रण विधेयक 2083 के दफावार विचार विमर्श के लिए संबंधित समिति में पठाओल जाके प्रस्ताव प्रस्तुत कयने छलथि। दफावार विचार विमर्श के लिए संबंधित समिति में पठाओल जा कहकर चारू प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक सँ सर्वसम्मति सँ स्वीकृत कलक अछि। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह सांसद सब के अपन विज्ञता हिसाबे देश के विकास में योगदान देवा लेल आग्रह कयलनि अछि। बुध दिन सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में संघीय संसद प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्व हेबा सन प्राविधिक पृष्ठभूमि के सांसद सब के विचार विमर्श के क्रम में प्रधानमंत्री शाह हुनका सब के राजनीतिक विषय से अधिक दीर्घकालीन नीति आ नया विचार में केंद्रित हेबा लेल आग्रह कयलनि। प्रधानमंत्री सांसद सब के पार्टी राजनीति संगे अपन प्राविधिक दक्षता आ व्यावसायिक पहचान के प्राथमिकता में राखे लेल सुझाव देलनि। निर्वाचन व राजनीतिक गतिविधि के समय में पार्टी राजनीति में सक्रिय होयब स्वाभाविक भेल बावजूदो अन्य समय में देश विकासक लेल प्राविधिक विषय में केंद्रित होबा लेल ओ आग्रह कयलनि। महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आ सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय भोटेकोशी बाढ़ में पड़ माय बाबू परिवारजन की गुमौनी घायल अपांगता भेल विशेष अवस्था के धियापुता के संरक्षण करबाक लेल बाढ़ प्रभावित धियापुता के दीर्घकालीन देखभाल करबाक योजना संचालन में अनलक अछि। महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आ सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी आई आयोजित कार्यक्रम में जानकारी करौलनि अछि। धियापुता के आवश्यक संरक्षण देखभाल उपचार शिक्षा सामाजिक सुरक्षा के व्यवस्था मंत्रालय राष्ट्रीय बाल अधिकार परिषद मार्फत कर रहल ओ बतौलनि। ओ ललितपुर के गोदावरी आ भोटी जोमे अस्थायी संरक्षण सेवा केंद्र संचालन में आयल चर्च करैत उद्धार कयल गेल धियापुता के आवास पोषण मनोसामाजिक सहयोग दीर्घकालीन देखभाल योजना निर्माण आ परिवार पुनर्मिलान लगायत सेवा प्रदान करैत आयल बतौलनि। विपद पश्चात धियापुता के लऽ जाय आ लाव के रोका धियापुता के हस्तांतरण कयला पर कोनो निर्णय लेला पर संबंधित बाल कल्याण अधिकारी के सिफारिश राष्ट्रीय बाल अधिकार परिषद के अनुमति अनिवार्य क अय के कड़ाई के संग लागू कयल गेल मंत्री वादी बतौलनि। सन 2024 में बोगोटा में संपन्न बाल बालिका विरुद्ध के हिंसा अंत संबंधी पहल विश्वव्यापी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के प्रतिबद्धता आ नेपाल के ने प्रगति के संबंध में जानकारी देब मंत्री वादी आवा वाला नवंबर में फिलीपींस के मलीना में होब लागल बाल बालिका विरुद्ध के हिंसा अंत संबंधी दोसर विश्वव्यापी मंत्री स्तरीय सम्मेलन में सहभागी होब लागल जानकारी दिलन। मंत्री वादी बाल बालिका ऊपर होब वाला सब जेहन हिंसा हटाब संघ प्रदेश आ स्थानीय तह विकास साझेदार नागरिक समाज निजी क्षेत्र परिवार आ समुदाय बीच प्रभावकारी सहकारी तथा बाल बालिका के अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक भेल बतौलनि।
प्रतिनिधि सभा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति विभिन्न कारागार तथा हिरासत में रहल थुनुआ एवं कैदीबंदी के मानव अधिकार की अवस्था संबंधी निरीक्षण तथा अवलोकन उप समिति के प्रतिवेदन 2083 पारित कलक छ। समिति के आजुक बैठक से ई प्रतिवेदन सदस्य से प्राप्त राय सुझाव के समेट कर परिमार्जन सहित बहुमत से पारित कलक छ। बैठक से ई प्रतिवेदन संसद में पेश करबाक निर्णय कलक छ। इससे पहले बैठक में ई प्रतिवेदन ऊपर सामान्य विचार विमर्श भेल छल। विचार विमर्श में सदस्य वालावती शर्मा, मोहनलाल आचार्य, सरस्वती लामा, मनीष खनाल, प्रकाश चंद्र परियार, साजिदा खातून, सिद्धगी, स्मृति सेंचुरी, नीनू कुमारी कर्ण, खीमा बिक आ अफसाना वानु भाग लेने छलथि। बैठक में बाल सुधार गृह में रहल बाल बालिका के मानवाधिकार अवस्था संबंधी निरीक्षण तथा अवलोकन उप समिति के प्रतिवेदन सेहो संसद बैठक में पेश करबाक निर्णय कयल गेल। समिति के सचिव रामहरि थापा अय के जानकारी दिलन। जेठ 8 गते के समिति के बैठक से 5-5 सदस्य बाल सुधार गृह में रहल बाल बालिका सबके मानवाधिकार के अवस्था संबंधी अध्ययन उप समिति आ विभिन्न कारागार तथा हिरासत में रहल थुनुआ एवं कैदीबंदी के मानवाधिकार के अवस्था संबंधी अध्ययन उप समिति गठन कयने छल। राष्ट्रीय सेवा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामले तथा सुशासन समिति के बैठक में सांसद सब संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन कोप 31 में हिम श्रृंखला संरक्षण आ जलवायु न्याय के मुद्दा उठाल जवाक चाही पर जोर दिलन। समिति के सिंह दरबार में बैसल बैठक में सांसद सब जलवायु परिवर्तन के कारण पघलत जा रहा हिम श्रृंखला बढ़ रहा हिमताल के जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त सुनिश्चित करबाक चाही बतौलन। सांसद सब जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन कोप 31 में नेपाल हिमाली एजेंडा प्रभावकारी रूप में उठात जोखिमयुक्त हिमताल के निरीक्षण करत आ तथा विपद पूर्व सूचना प्रणाली के सुदृढ़ बनेबाक चाही बतौलन। बैठक में ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के सहसचिव सुशील चंद्र आचार्य कोप 31 में भोटेकोसी त्रिशूली क्षेत्र के पुनर्निर्माण तथा प्रभावित 13 जल विद्युत आयोजना के लिए जलवायु लगानी अनुकूल वित्त सुनिश्चित होबाक चाही पर जोर दिलन। एना कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर महेश्वर ढकाल हरित अर्थतंत्र विद्युतीकरण आ स्वच्छ ऊर्जा तथा उत्थानशील शहर आ समुदाय विकास संगे हिमाली मुद्दा में अंतर्राष्ट्रीय सहकार आवश्यक रहल बतौलन। बैठक में वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र के नायब कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर नारायण प्रसाद अधिकारी वातावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ चूल प्रबंधन उद्योग में खनिज ईंधन के प्रयोग के घटबित विद्युतीय तथा जैविक ऊर्जा दिश रूपांतरण आ कूड़ा कचरा से बायोगैस उत्पादन के कार्यक्रम संचालन भ रहल जानकारी दिलन। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सरकारी संचार माध्यम के खराब से खराब अवस्था में पहुँचायल गेल बतबैत अय के सुधारक आवश्यक सुझाव देब सांसद सब संग आग्रह कलन। प्रतिनिधि सभा बैठक में आय धारणा रखत ओ सरकारी संचार माध्यम के किछ आर्थिक वर्ष के लेखा परीक्षण के काज सेहो नहीं भेल बतबैत ओ अय के जीवंतता के लेल स्वयं प्रयास कर रहल बतौलन। वह हिसाबे आम संचार माध्यम तथा सामाजिक संजाल में गलत सूचना से प्रकाशन भेल से प्रति कानून कार्रवाई के लेल प्रावधान बनवाक क्रम में रहल ओ संसद बैठक के जानकारी करौलन। भ्रामक आ प्रमाण विहीन समाचार प्रकाशन करय वाला संचार माध्यम के कानून कार्रवाई के लेल संसद में विधेयक आने के तैयारी भेल ओ बतौलन। पत्रकारिता के नियंत्रण नहीं भर नियमन करवाक आ जिम्मेवार बनेगा काज में मंत्रालय लागल जानकारी करबे तो प्रेस काउंसिल विधेयक सदन में शीघ्र आवाक ओ जानकारी दिलन। आम संचार विधेयक सेहो शीघ्र सदन में आनबाक तैयारी भ रहल ओ बतौलन। प्रेस काउंसिल नेपाल के थप मजबूत बनेबा लेल विधेयक तैयार कयल गेल ओ बतौलन। संविधान से व्यवस्था कयल गेल सूचना संचार के हक सुनिश्चित रहल बतबैत ओ विज्ञापन बाजार के व्यवस्थित बनाकर मीडिया क्षेत्र के आत्मनिर्भर बनेबाक प्रयास जारी रहल बतौलन। सरकार लोक सेवा विज्ञापन से मात्र मीडिया क्षेत्र बाँच सकबाक अवस्था नहीं रहल बावजूदो लोक कल्याणकारी विज्ञापन के सबके पहुँच में पहुँचेबा सन सरकार काज कर रहल बतौलन। सिंचाई के लिए जिला के विभिन्न स्थान में जड़ान कयल गेल विद्युत ट्रांसफार्मर और मोटर चोरी भेला से किसान सब मार्के में पड़ल। निरंतर चोरी के घटना बढ़ रहल अपराध में संलग्न के पहचान आ कार्रवाई होबल नहीं सकला से किसान सब के बेचैनी बढ़ल। बीतल समय सोनमा दू के तरहारी आ मैनटोल तथा सोनमा दू के तरहारी आ मगर थाना बीच के पोखर के मुहार पर जड़ित ट्रांसफार्मर संचालन होब से पहिने ही चोरी भेल। सोनमा गाँव पालिका में जड़ित ई ट्रांसफार्मर विद्युत लाइन जोड़ के संचालन के तैयारी में रहल छल। मध्य प्रदेश सरकार किसान के सिंचाई सुविधा बढ़ेबाक उद्देश्य संग जड़ान कयल गेल ट्रांसफार्मर संचालन से पहिने ही चोरी भेल।
ट्रांसफार्मर चोरी भेलाक बाद किसान प्रशासन के देख रहल अछि आ मंगल दिन जिला प्रशासन कार्यालय पहुँच कर चोरी कनिहाल के खोजी आ कार्रवाई के मांग कलक अछि। सिंचाई के लेल तत्काल दोसर ट्रांसफार्मर के व्यवस्था क देवा लेल किसान सेहो मांग कयने अछि। जिला प्रशासन प्रहरी परिचालन का चोरी में संलग्न के खोजी करबाक आश्वासन देने अछि। घटना के संबंध में तत्काल अनुसंधान करबाक लेल जिला प्रहरी कार्यालय महतरी के पत्रचार सेहो कयल गेल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: प्राप्त गरौँ।
1: प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट सजिलै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
2: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: अब बाँकी समाचार। महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक और सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी ने बताया कि भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित बच्चों के लिए दीर्घकालीन देखभाल योजना शुरू की गई है। काठमांडू में आज आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बाढ़ में माता पिता और परिजनों को खोने वाले घायल तथा दिव्यांग बच्चों को संरक्षण, देखभाल, उपचार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री वादी ने बताया कि ललितपुर के गोदावरी और भोटी जो में अस्थाई संरक्षण सेवा केंद्र संचालित है, जहां बच्चों को आवास, पोषण, मनोसामाजिक सहयोग और परिवार से पुनर्मिलन जैसी सेवाएं दी जा रही है। उन्होंने बच्चों के खिलाफ मानसिक, शारीरिक, श्रमिक शोषण और डिजिटल हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कानून और नीतियां लागू किए जाने की जानकारी दी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने मुगु के खाने पानी, सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय के तत्कालीन प्रमुख राजीव रिमाल समेत 8 लोगों के खिलाफ आज विशेष अदालत काठमांडू में भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया है। आयोग के अनुसार अदानचुली गांव पालिका के कुकुर फालना छहरा खेत से मुगु के सोरू गांव पालिका 3 भी तक बिजली निर्माण के लिए आवंटित राशि से काम किए बिना 9,26,000 रुपए का दुरुपयोग कर गैर कानूनी लाभ लेने का आरोप है। मामले में तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रिमाल, सब इंजीनियर विश्वराज भंडारी, लेखापाल रुण बहादुर सेजुवाल, तत्कालीन वड़ा अध्यक्ष लालू धामी तथा जलविद्युत उपभोक्ता समिति के 4 पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। मनांग के हेमलुंग हिमस्खलन में लापता हुए 3 और लोगों के शव आज मिले हैं। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी कृष्ण प्रसाद बॉडल के अनुसार मृतकों में गोरखा के 58 वर्षीय आश गुरुंग, खोटांग के 21 वर्षीय सूरज राय और रुकुम के 57 वर्षीय कमल बुड़ा शामिल है। उन्होंने बताया कि हिमस्खलन में अब भी 9 लोग लापता है। इससे पहले 4 लोगों के शव बरामद किए गए थे। शव नेपाल नेशनल माउंटेन गाइड एसोसिएशन की बचाव टीम ने खोजे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने का आह्वान किया है। 29 सितंबर 2026 को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान स्थिति को शीत युद्ध की समाप्ति के बाद का सबसे खतरनाक परमाणु दौर बताया। गुटेरेस ने कहा कि परमाणु हथियारों को बढ़ता भंडार, परमाणु बयानबाजी और दशकों से बनाए गए सुरक्षा तंत्र का कमजोर होना वैश्विक जोखिम बढ़ा रहा है। उन्होंने परमाणु हथियार रखने वाले देशों से संवाद फिर शुरू करने, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने और अपनी सुरक्षा नीतियों में परमाणु हथियारों की भूमिका कम करने का आग्रह किया। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक प्रतिनिधि सभा से पारित, आवश्यकता के अनुसार प्रदेशों में की जा सकेगी प्रयोगशाला संचालित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का सांसदों से अपनी विशेषज्ञता के अनुसार देश के विकास में योगदान देने का आग्रह है। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP31 में जलवायु न्याय के मुद्दे उठाने की बात पर संसदीय समिति में सांसदों ने दिया जोर और परमाणु निरस्तीकरण के प्रयास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का आह्वान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।